0: ཅིས རང དམ དབ ཡ ཁང དག ཡེབ ཁ རི ཡིན ནེ རང དམ ཅི དེ ཡོ སུ ཤ ཉེ རང ཤེ ཁང དག རང ག ང ཡི ཅི མེ ནེ ཅ ང ནང རུ བར སམ ནེ ཁེ ཁེ སམ མི དུ
1: དེ དེ སང གི མ ཆོ
0: ང ཐུང ཆུ ཤེ ནེ ང ཁེ སམ མི དུ
1: རང ཡིན ཡིན ཁ ཤེ ཡོ
0: སུ ཤ རང ཁེ བོ མ ལ སིང གི བ ཆི ལོ ཙུང ལེང ཤུ བི ནེ ང སུ ཉམ དོ ཡོ ཤམ ཅི ཤུ བ ཁེ མི དུ མི ཅིག ལམ ནེ ཁ ཁེ ཤ མི དུ ཡིན ནེ རང ཁེ ང སུ མ ཐོང སེ ས ཅ ཁུག དག ལེ དེ དེ མ ཆི ལ རང མི ཅིག གི ཁུག དག ལེ དེ གེན ཅ མ ཅི དེ ཁེ ག ཆེ བི ནེ ང སུ ཡང སམ ཅི ཅིག མ ར ད
1: ये दिन चिंग मार्शी मारे अगर आज चिंग से की ये बेसुं खुदा जैसे कोने दिन चिंग आप शी मस्से अगर जंग रा केले में दे सेब चिंग की ये लो जून लेने से मस्से चिंग इस लवी तो ये ले खुदा जैसे चुच समय आओ सुन इस लवी 一年他们爹你这最起码多去些多了三个月的下面多这三个罗总连给俺翻书证的这段店里俺的盼不住不是俺两个人自己是大意罗总连罗哈些的根本也不咋不是
2: 可理书给不到是人堂的罗群就算了罗总连旁边大爷给顾客不到退出钥匙不他可是起码让了顾客点点体谅朋友的听我林子有给我的陈友友不然给我我最难过干嘛是对这些你我我运输了 回去收拾新鱼，这是对的。老朱的给钱不多，老朱的给上嘛，那是东西没给没算钥匙。这张案子，老朱的给了送给钱都不合适。看他费力，我不会为什么。
3: 你一直不进去，没得他最近。
4: 长不些呢？让点药日子，只有给些种啊。

0: ཚང་ལུ ཆེ་དར ཡ་ཡ་ ཡ་པོ ཛ་པ་ད་ ཐིན་ཚོང ལབ་ཚེ་ན་དོ ཕ་སམ་ཚོས་ད་ནེ ཚང་ལུ་ཤི་ཤ་ ཚང་མེ་སང་ཨུས་ཅ་ཐ་པ་ཤེ་ཡུ་ཅི་སོང་པ་རེ
1: ཤང་ལ་ཆན་དོ་ཟོང་ཅེ་ལ་ཉམ་ཅེ་ཉིན་ཇུ་དེ་ནི་ཁོང་དོ་ཤེ་པི་སན་ཅེ་ལ་དེན་ཅིན་ཟོང་ཡེ་དོ་ཟོང་ཚོ་ཚོ་དེ་ལེ་ཇུ་ཅེ་ང་ནི་ལ་ཅ་ཅུ་པི་ཀོ་དེ་སི་རོ་ད་ཐང་ཅེ་ལ་ཅ་དེ་ཚེ་དེན་ཅེ་ཇུ་རན་ཡེ་ཟོང་ནི་ཏེ་བ་ཐང་ལེ་དེན་མ་ནི་ལེ་མི་ཅེ་ཏོ་ཐང་མ་ནི་ཆན་ཅེན་ཡེ་དར་ནེན་པོ་ཤེ་དེ་ལ་ 给芒族人，芒以李根族人能安了德林县呢？芒族人共产党李九头把当，李个的县呢永不杀头把，南边的大多头把，兄弟李头把几县呢？学校是李个人周围我约家，跟你打女丁事业不是？
2: 当然了，他那俺嘞，俺那些嘞吃油的那的呢，哦，冻上人呢。ने ना अबो ली दे तोला पयंग तरस दा का अबो ला ता तिल गावला सु छेंबो फल काल रो मगो तिल छेंबो जिबा रिंग स गु जो जिग तिन गावला सु
1: ये दे जों छो बे दे द शे दे ये युंग के छो दिन ली जे शे दा छे दे हु जिन दोंग ने सा ने दे गे ना जों ने हु गांग सांग शे दे बा बा जे ता लन जा जे दोंग ये बा दा दा दोंग सा ने सा तो द मंग पिन सी जे जों जे शे ने मंग जो ला गो दिन लिन सोंग जे सा लो बों जे छे दिन शे दे ले जिन शुंग जे जे दे ही शे ने芒族节拍击节过秋拍瓦西巴西，广大人们也用香格草顶立着节芒片女巴门庭短白些呢。他年三了雷干州局蓝色短桥当芒族跟宋店的东地，雷军爸爸了店呢，中西大姐姐被车头一拍击了，工地东角一巴西。
2: 大陆呢就吃油果呢，顶起做些洋香、些东村顶餐的呢，吃顶家卡拉斯的一共的这个项目，第二顶餐的呢，再来吃家家是高脚的用吧。对呀，阿婆了，也不热的。
1: 现在三千多的卡就是说，
0: 你电脑卡装在上头中，地卡里边六千零头八，岳阳的李九特别到通济工厂办的，老家装在上头中当人在中，光格的中，电信那家装在吉安都中几间，六千零头八三千手机，湖南岳阳的李九特别普遍按揭的下进行办的，那路村的岳阳当上头中介，平镇镇头当上县里，李九集团老家去当位。通透罗干的应变，六千人头把主机的上，岳阳的李九特约派的。年底，千多庄稼人大总结，千多里头能种草呢。昨年没草，李九特级人通解决约派的。里头能做到，将吃能当，天气节开带着酒楼开里，各级过年正在些呢。来赞助正当，沿着拉子少，敲光芒波，连年节当家真空都西边。李干从给做让你接落来右边李干错敲个右边的，你爹让将军出爹爹当领接，每东边操办政治些呢。拉萨中间城管前，当晚离开的街，张茫茫走了。俺接人不，镜头内打街当，江内街内打这街，大堂龙之当走出熟悉吧的。这不能把天天看街上街人住些吃了。
1: 这里忙为三角钱的呢，交流一整天批批了谁说？
0: 俺做三年家用。
1: 三年家用。

0: उन्हें जेना संजले लोक शेष दे मार्ज भी पिसी ला माखो में आकर तो
1: आ संजले कुंगु मितु शायद इसे गल चावा चास तो शाओ हुंजी यू जा ने दूर ही चली
0: आ ने सिंसो कर से ना मासे ना पिसी लेन साबसे नाली में खासे दे नगुचे तो अचार के निले चिक्षी वो चूता चांस के बच्चे ला आराज क्यों रुक तो में बा वो
1: इन्हें चुचो तारे शाओ हुंजी मार थोले सुना इंजी आधा पहुँच लो चुकी ना सो लिया खा चुका मार जे इंजी लो चुका ल दो नियां जा खा चुके तो लो यार चे कंगो मितो मिन्ये मांग सी चुका चुका जे
0: 당신